0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी छौ छौ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिस होम इन्टरनेट।

0: ली मैं तो रेडी रोलिंग
1: एक्शन
2: क्यों था तो नहीं बोला मेकअप नहीं बोला ये था उन्हों ये था इधर मेकअप
0: कट कट कट तेरे तेरे

0: बाल ढाका का आधुनिक डिजाइन का साड़ी दमौली बजार को पदम चोक ब्यास दुई में पाइन नी दीदी
1: हो रत खोजे पदम चोक मो रहे
0: होनी दीदी निखिल ढाका कपड़ा तथा सटिंग सुटिंग उद्योग में ढाका को साड़ी दोपट्टा साड़ी दौरा सुरवाल कोट पैंट शर्ट जनजाति ड्रेस कपड़ा का झोला तथा सैंडल पाइन नी
1: विवाह व्रत बंध पासनी तथा चाड़ पर्व खोजी खोजी निखिल ढाका कपड़ा तथा सटिंग सुटिंग उद्योग में नहीं जानु रथी भनी हाल बहनी मत हामी कहाँ ढाकाको हातले बुनेका कपडाबाट साडी टोपी दौरा सुरुवाल चप्पल कोट पाइन्ट झोलाहरू र जनजाति ड्रेसहरू साथै दोपट्टा साडी बनारसी साडीहरू सुपथ मूल्यमा तयार गरिन्छ
0: प्रोप्राइटर विष्णु एन्ड कला निखिल ढाका कपडा तथा सटिङ सुटिङ उद्योग ब्यास दुई पदमचोक दमौली तनहुँ सम्पर्क नम्बर 9840001 9066 73 344
2: ए नानी कता हिँड्यौ छाता ओढेर हतारमा छौ त
3: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम हिँडेको नि दाइ
2: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम कहाँ छ नि नानी
3: यो त ब्यास दुई कालिका मार्गको दमौली क्युएफएक्स मल अगाडि छ नि दाइ
2: सफा सडकको पुरी रेडियो सेल्स भनेको नै एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम हो नानी
3: हो दाइ दमौलीको एकमात्र एलजी ब्रान्डको सोरुम एसआर इलेक्ट्रोनिक्समा एलजी तथा सिजी ब्रान्डका वासिङ मेसिन एयर कन्डिसनर रेफ्रिजरेटर एलइडी माइक्रोवेभ ओभन भ्याकुम क्लिनर आदि सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ साथै 0% ब्याजमा किस्ताबन्दीको पनि सुविधा रहेको छ
2: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम ब्यास दुई कालिका मार्ग दमौली तनहुँ
3: प्रोप्राइटर सुरेश पुरी मोबाइल नम्बर 9560 63 444 98 560 60 656

0: पानीको व्यवस्था छ।
1: प्रोप्राइटर गम्भीर दास नेपाल, मोबाइल नम्बर 98 44 65 94 36, 98 065 41 437।
0: व्यास 3 प्रशासन चोक दमौली।

0: World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV sets of box मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थरु लागू होने चं छिटो बने गई World Link.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

एक्सक्लुसिविटी ऑफर अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 एमबीपीएस इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू हुनेछन् छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक।

भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अंग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गते देखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस ब्यास 1 विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096 98562097 98562428।